0: पद्मश्री हस्पिटल एण्ड अलाइड साइन्सेस प्राली न्युरो पोखराले विभिन्न प्रकारका विशेषज्ञ सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
1: बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विनोद तुलाथन, डाक्टर वन्दना श्रेष्ठ,
2: हाड जोडी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर यज्ञमान साक्य, डाक्टर प्रवीण थापा, डाक्टर सुभाष गुरुङ,
1: जनरल एण्ड ल्याप्रोस्कोपी सर्जन डाक्टर नरेन्द्र विक्रम गुरुङ, डाक्टर देवेन्द्र श्रेष्ठ,
2: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर डेला सिंह जोशी, डाक्टर चुम्मया पोन,
1: मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर तेज बहादुर गुरुङ,
2: क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि शेर्चन, फिजिसियन तथा पेट कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर विकास अधिकारी,
1: पेट कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर शंकर बराल,
0: युरोलोजिस्ट तथा मृगोला रोग,
2: हाड जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर यज्ञमान साक्य, डाक्टर प्रवीण थापा, डाक्टर सुभाष गुरुङ,
1: जनरल एण्ड ल्याप्रोस्कोपी सर्जन डाक्टर नरेन्द्र विक्रम गुरुङ, डाक्टर देवेन्द्र श्रेष्ठ,
2: प्रसूति तथा स्त्री

0: বাতসালিয়া পোখারা ক্লিনিক, নিউ রোড, পোখারা। ফার্টিলিটি হেল্পলাইন 01-597-06-11।
1: রামু দাই, পরিবারে লিয়ে হিড়ন ভয়েকো ছ ত? টাড়ে হো কি ক্যাও?
2: এসো বসি বিয়ালো পনি হুনছ, ডিএস মর্দি হিমাল রেইনবো ট্রাউট তির মাছা লিন জান লাগেকো।
1: এ হো র দাই, অনি দেওয়ান সিংহ মর্দি হিমাল রেইনবো ট্রাউট কানে র ছ র?
2: ল তিমলাই থাহা ছাইন র? ল সুন উসো ভয়ে, মাছাপুসে গাউপালিকা ওড়া নম্বর 9 অজিপ্রৌমা খুমাই ডাঁড়াকো ফেদিমা হিমালকো মনোরম দৃশ্য হের্দে রেইনবো ট্রাউটকো ফ্রেস মাছা লিন পাইন্ছ নি। ঝন ত্যাহা ত অরু ঠাউকো ট্রাউট মাছা ভন্দা পনি সস্তো র 2 কেজি ভন্দা বড়ি ট্রাউট মাছা অর্ডার গরেমা হোম ডেলিভারিকো পনি ব্যবস্থা রয়েকো ছ নি। তিমি হামিলাই সজিলো র সুবিধাকো লাগি এই পোখরাকো টেলিকমকো পছাড়ি সয়পত্রী চোকমা আউটলেটকো পনি সুবিধা ছ। তিমিলাই যতি বেলা ট্রাউট মাছা খান মন লাগছ নি টুপলুক্ক উতি বেলাই উপলব্ধ গরাউছ।
1: লৌ ন দাজু, কত্তি রাম্রো সেবা রয়েছ, म पनि बुढालाई लिएर आइहाल्छु है।
2: नयाँ फर्म भएकोले ट्राउट माछा सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गरिएको छ।
1: सम्पर्क मोबाइल 98560-19218, 98028-57710।
3: पद्मश्री हस्पिटल एन्ड अलाइड साइन्सेस प्राली न्यू रोड पोखराले विभिन्न प्रकारका विशेषज्ञ सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
4: बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विनोद तुलासन, डाक्टर वन्दना श्रेष्ठ,
3: हार जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर यज्ञमान साक्य, डाक्टर प्रवीण थापा, डाक्टर सुभाष गुरुङ,
4: जनरल एन्ड ल्याप्रोस्कोपी सर्जन डाक्टर नरेन्द्र विक्रम गुरुङ, डाक्टर देवेन्द्र श्रेष्ठ,
3: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर डेला सिंह जोशी, डाक्टर चुम्मया पोन,
4: रोग विशेषज्ञ डाक्टर तेज बहादुर गुरुङ,
3: क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि शेरचन, फिजिसियन तथा पेट कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर विकास अधिकारी,
4: पेट कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर शंकर बराल,
3: युरोलोजिस्ट तथा मृगौला रोग प्रत्यारोपण सर्जन डाक्टर प्रकाश छेत्री, मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर जुजुराज श्रेष्ठ, नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर मानकाजी थापा मगर, प्लास्टिक सर्जन डाक्टर पीयूष गिरी, छाला विज्ञान भेनेरियोलोजी तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर अस्मिता वाग्ले, नाक कान घाँटी तथा थायराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर विकास गुरुङ, कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिस्ट डाक्टर मनिष किरण श्रेष्ठ, डाक्टर सुमिरन श्रेष्ठ, कन्सल्टेन्ट एनेस्थोसियोलोजिस्ट डाक्टर भूपेन्द्र कुमार तुलाचन, डाक्टर विशाल गुरुङ, कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर अनुमोल पौडेल,
5: वार्ड आईसीयू एनआईसीयू जनरल एन्ड ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी सेवा, पोस्ट अप सेवा, फिजियोथेरापी, इन्डोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, इको, टीएमटी, हल्चर, पीएफटी, युरोफ्लोमेट्री, डायलोसिस सेवा र आँखा उपचार सेवा, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा साथै अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा सेवा प्रदान गरिएको जानकारी गराउँदछौ।
4: 24 घण्टा प्याथोलोजी सेवा उपलब्ध छ। विस्तृत जानकारीको लागि पद्मश्री हस्पिटल एन्ड एलाइड साइन्सेस प्राली, पोखरा 9 न्यू रोड, फोन 061-590-162-590-163।
6: राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ल्यायो नयाँ योजना, किसानका लागि सुनौलो छ यो सपना।

0: डिस्काउंट पॉइंट संग सदै रिवार्डेड।
1: कैंसर को संपूर्ण उपचार विराटनगर में सब प्रकार का कैंसर को उपचार शल्यक्रिया रेडिएशन सहित न्यूक्लियर मेडिसिन सेवाहरू उपलब्ध छन्। नेपालको कुनै पनि ठाउँबाट कैंसर को उपचार का लागि यति एयरलाइन्स मार्फत दुई तर्फी निःशुल्क टिकट को व्यवस्था गरिएको छ र उपचार का लागि पालो फुट्नु पर्दैन। विराट मेडिकल कॉलेज टीचिंग हॉस्पिटल अंतर्गत नेपालको नंबर वन कैंसर हॉस्पिटल विराट कैंसर इंस्टीट्यूट विराटनगर। हब जानकारी का लागि संपर्क नंबर 9761 00 25 30।

3 बजे को समय में दुईवटा यात्रुवाहक बस लगे चितवन जिला प्रहरी कार्यालय माथिबाट खसे पैरोले बगाउँदा दुवै बस त्रिशुली नदी में खसे। यसैगरी सोही सड़क खण्ड को 17 किलोमा अर्को यात्रु बस में पहिरोबाट झरेको ढुंगाले लागेर चालक को

0: वात्सल्य पोखरा क्लिनिक न्यू रोड पोखरा फर्टिलिटी होप लाइन 01-597-06-11
1: ओहो नाचर बे कति छाबा डिजाइन बे मारेगा ना खिनानी खनि तोला
2: खनै बिवा नाचर बे रूपाकोट ज्योति सुनचाती दुकान महेन्द्र पुलारी तोला
1: ए नैसाबा मार दुकान पो मोना नै प्रेसलाइनी च्याबा चुरा रैया औठी हमेला झोका टस टिक्री हार तान चनै तो हो नि जगा मात्र आङी खैमा खैमा समस्या पर्दी र मार चुवल तुई बिसानारी बेल्ले छ्याबा कोपिम ओछे
2: हजुर किमे झोको लाइनी छाबा छाबा छाबा मारे डिजाइन गहना चैदी मिशा वा चुवल तुई बिसा रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दुकान पोखरा महेन्द्र पुलारी खोऊ जु दुकान पोखरा महेन्द्र पुलाई विशाल बजार गेट नलो धिताई पालिखी चोकै यावै क्यार मोहै
1: जगा मात्र आङी रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकाने घिस शाखा पोखरा महेन्द्र पुलारी अन्नपूर्ण सुपर मार्केट आडरे मुहै आसुम ल्यादो
2: समुताय रवा ता क्रिबा ज्याला जाति क्रिबा छतैरा नत खैमा बिलन चन्न यामो
1: तोय निल ती दिशा रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकान महेन्द्र पुल पोखरा सम्पर्क 061-580-815 98-560-35-815 प्रोप्राइटर दशरथ सुनार
2: छतैरा त तान नि भिम्द
3: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउ है रूपाकोट।

ओयल मेटल इंडस्ट्रीज को उत्कृष्ट उत्पादन जिंदल एसएस पाइप नेपाल्स नंबर वन ब्रांड नक्कली देखि सावधान जिंदल को लोकप्रियता ले गर्दा नक्कली जिंदल बजार में आएको हुनाले प्लास्टिक में मात्र नभई पाइप में पनि जिंदल लेखेको पाइप मात्र खरीद गर्नु होला टिकाऊ र गुणस्तरीय काम जिंदल पाइप हो यसको नाम।